जी एआई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइफ्स गुड.

0: नम्बर 9851108778 र 9808878778।
1: लस्सो है मेबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम बोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नग फारममा असिम टमाटर की ट्रनेलमा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो होई रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 0102540 असेम 9851187882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा।
2: तपाईं रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बेलुकीको 8 बज्यो।

0: ভুড়ি এরতা লাও
1: আহা কত রামড় মঙ্গলসূত্র কাবাটে লাগো
0: কাবাট হনুনি মইলে দিদি বৈনি সুনচাদি ঘর গহনা উদ্যোগ বাটা ল্যাকো নি
1: হজুর আমি কাহা নয় তথা পুরানা আকর্ষক ডিজাইন মা সুনচাদি কা ঘর গহনা অর্ডার অনুসার তৈয়ার করিনছ
0: দিদি বৈনি সুনচাদি ঘর গহনা উদ্যোগ নীলকণ্ঠ নগরপালিকা ওয়ার্ড নম্বর 3 শান্ত বাজার ধাদিং প্রুফ রাইটার মেনুকা বরাইলি সম্পর্ক নম্বর 9818-3274-73 9861-7549-88 9861-7549-88
2: জাপানমা বসোবাস গর্নে নেপালী অভিভাবক তথা বিদ্যার্থীহরুকা লাগি খুশিকো খবর শৈক্ষিক সত্র 2026-27 কা লাগি নেপালী পাঠ্যক্রমমা আধারিত জাপানকৈ অগ্রণী শৈক্ষিক সংস্থা এভারেস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল জাপানমা কক্ষা 11 মা ম্যানেজমেন্ট র সাইন্স বিষয়কা কক্ষাহরুমা নয়া ভর্না খুলেকো ছ অনুভবী শিক্ষকহরু আধুনিক শিক্ষণ বাতাবরণ নেপালী পাঠ্যক্রম অনুসার গুণস্তরীয় শিক্ষা এসইই র এনইবি বোর্ড পরীক্ষাকো উৎকৃষ্ট তয়ারী ছাত্রবৃত্তিকো ব্যবস্থাকা সাথে নেপালী ভাষা সংস্কার র পহিচান সঙ্গেই অন্তর্রাষ্ট্রীয় এক্সপোজরকো অবসর সিট সীমিত ছ আজই সম্পর্ক গরি আপনা বাল বালিকাকো উজ্জ্বল ভবিষ্য সুনিশ্চিত গর্নুহোস সম্পর্ক 03-5335-7379 সেন্ট্রাল টোকিও জাপান এভারেস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল জাপান উজ্জ্বল ভবিষ্যকো বলিও আধার
3: ও মেজু নমস্কার হাই
4: নমস্কার নমস্কার মেজু নমস্কার
3: ল বধাই ছ হাই বিয়ে গর্ন লাগ্নু ভয়েছ
4: ল ধন্যবাদ ধন্যবাদ মেজু অনি বধাইলে মাত্রই ত পুগ্দৈন হাই মেজু জন্ত গয়ের ছমি নাচ্নু পনি পর্ছ কে
3: হাই মেজু ম ত বিয়েমা আউদিন হলা
4: ল মেজু मेरो बिहेमा किन नआउने नि
3: किन आउने नि मिज्यू धादिङमा एउटा राम्रो दौरा सुरुवाल सिलाउने ठाउँ त छैन के बिहेमा आउनु र खै
4: ल्या मिज्यू त्यस्तो नि कुरा हुन्छ त धादिङ बेसी बीच बजारमा हाम्रो कपडा घर खुलिसक्यो नि मैले पनि दुलाकोट त्यहीँबाट सिलाएको हो नि त्यहाँ त सर्टिङ सुटिङ दौरा सुरुवाल स्कुल कलेजको ड्रेस सबै पाइन्छ त्यहीँ किन्ने त्यहीँ सिलाउने केही चिन्तै छैन नि
3: लौ न हो र अनि ठ्याक्कै कहाँ हो नि
4: ल सुन्नुहोस् नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 बीच बजारको कलर ल्याब सँगै महालक्ष्मी ब्याङ्क भन्दा ठ्याक्कै तल्लोपट्टि अझै देख्नु भएन भने प्रोप्राइटर दिनेश शाहलाई फोन गर्नुहोस् फोन नम्बर 9845-55-6656 अनि 9828-049-215 फोन गरेर जानुहोस् है
5: सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी सूचना गंगा जमुना गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रदान गरिएको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको प्रभावकारिता विषयक गाउँपालिका स्तरीय सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुन स्थानीयवासी राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू पत्रकार तथा सरकारवाला सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति यही असार 17 गते बुधबार स्थान गंगा जमुना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय परिसर फुलखर्क धादिङ
6: मम्मी मलाई चप्पल किन्ने पैसा दिनु त तिमीलाई चप्पल किन अस्ति भर्खर पैसा दिएको होइन त्यो त फाटिसक्यो नि बजारमा अहिले कस्तो डुप्लिकेट जुत्ता चप्पल आइरहेछ हजुरलाई के थाहा
7: होइन तिमीहरू अघिदेखि किन झगडा गर्दैछौ
6: किन हुनु नि अस्ति भर्खर किनेको चप्पल आज फाट्यो भनेर पैसा माग्दैछ
7: ल भाइ हल्ला नगर छोरी तिमीलाई म पैसा दिन्छु तर जुत्ता चप्पल किन्न चाहिँ कृष्ण सप्लायर्स पुछार बजारमा जाऊ है
6: किन नि बाबा
7: किनकि त्यहाँ बच्चादेखि बुढासम्मलाई हुने लेडिज तथा जेन्ट्स आइटमका आकर्षक जुत्ता चप्पल सुपथ मूल्यमा खुद्रा तथा होलसेल बिक्री गरिन्छ नि
6: हस् बाबा
8: कृष्ण सप्लायर्स धादिङ बेसी पुछार बजार प्रोप्राइटर कृष्ण तिबल सिन्हा
9: सम्पर्क मोबाइल 9741-031-429
10: के तपाईँले दाँत मुख तथा गिजाको समस्या छ यदि छ भने लाङ्गाली डेन्टल क्लिनिक सधैँ तपाईँको सेवामा रहन्छ
11: नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई विषयगत विशेषज्ञद्वारा नै सञ्चालन गरेको लाङ्घाली डेन्टल क्लिनिकका उपचार सेवाहरू
10: दाँतको जराईदेखि उपचार गरिदिए नमिलेको दाँत तारले बानेर मिलाउने दाँतमा सिमेन्ट भर्ने, कृत्रिम दाँत राख्ने, साधारण दाँत निकाल्ने तथा गिजाको शल्यक्रिया गर्ने, बुद्धि बंगारामाथि पलाएको गिजा काट्ने, दाँतको रङको मेटलको खोल लगाउने, दाँत तथा मुख गनाउने समस्याको उपचार गरिने, अर्थोडेन्टिस्टबाट सेवा परामर्श दिइने, बच्चाहरूको दाँतको विशेष उपचार गरिने, दैनिक बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म क्लिनिक सञ्चालनमा रहने।
11: मुस्कुराउनुहोस् दन्त लहरमा खुसी भएर। लाङ्घाली डेन्टल क्लिनिक, नीलकण्ठ 3 धादिङ बेसी, होटल जनजीविकाको ठिक अगाडि, कामना विकास बैंक भएको घरमा।
10: थप जानकारीको लागि डाक्टर रचना रेशमी मगर, सम्पर्क फोन नम्बर 9841055754, 9841055754। ए सुन्नुहोस् त, 50 वर्ष भन्दा माथि उमेर समूहको लागि दन्त उपचार सेवामा 50% छुट सुविधा पनि रहेको छ।
9: पावरवाला चस्मा, जस्तो भन्यो त्यस्तै फ्रेम तथा विभिन्न ब्रान्डका घडी तथा चस्माहरू अब एकै ठाउँमा।
11: तपाईँको हेर्ने क्षमतालाई बनाउँछौ हामी प्रकाश जस्तै चम्किलो। आरबी चस्मा पसल, आरुघाट गाउँपालिका 9, आरुघाट बजार, बंगैचा, गोर्खा।
9: हामी कहाँ दैनिक रूपमा निशुल्क आँखा चेक जाँच गरी पावरवाला चस्मा 5 मिनटमै तयार गरिन्छ।
11: विभिन्न ब्रान्डका सनग्लास, फ्रेम, कन्ट्याक्ट लेन्स पाइनुका साथै विभिन्न ओरिजिनल ब्रान्डका घडीहरू तथा चस्माहरू पाइन्छ।
9: प्रोपाइटर बिटु विश्वकर्मा, सम्पर्क नम्बर 9843062616 र 9810323754।
11: ए सुन्नुहोस् त, हाम्रो पसल पहिलाको भन्दा ठिक अगाडि सरेको छ, हेर्न नभुल्नु होला।
12: घर त बल्ल बल्ल बनाइ भ्याए, अब ग्रिल, यूपीभीसी र अल्युमिनियमको झ्याल ढोका फिटिङ गर्न पो झ्याउ छ त। हैरानै बनायो भने एउटा सके अर्को काम आई लागि हाल्दी, स्वास्थ्य मस्तमा कहाँ गएर ल्याउने होला।
13: अहिलेको जमानामा पनि टेन्सन लिने हो र अङ्कल, अन्त कहीँ जानु पर्दैन, धादिङ बेसी स्थित धादिङ अस्पतालको पछाडि सिद्धार्थ ग्रिल एचएल यूपीभीसी एन्ड अल्युमिनियम हाउस छँदैछ नि। त आईएसओ नेपाल गुणस्तर मान्यता प्राप्त यूपीभीसी अल्युमिनियमका झ्याल ढोका बनाउनुका साथै फलाम स्टील सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। यूपीभीसी र अल्युमिनियमका सामान अन्तभन्दा होलसेल मूल्यमा पनि पाइन्छ।
12: ए त्यसो भए सम्पर्क नम्बर भन त, म आजै गइहाल्छु, 1227 को कुरा सुन्दिन म।
13: ल टिप्नुहोस्, प्रोपाइटर वीरबहादुर श्रेष्ठको लागि 9843064537 र 010590093 सम्पर्क गर्नु होला नि।
12: हजुर, विगत 10 वर्षदेखि तपाईँहरूकै सेवामा तत्पर सिद्धार्थ ग्रिल स्टिल यूपीभीसी एन्ड अल्युमिनियम हाउस, नीलकण्ठ नगरपालिका, वार्ड नम्बर 3, धादिङ अस्पतालको पछाडि। प्रोपाइटर वीरबहादुर श्रेष्ठ, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9843057437।
14: तपाईँ रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।